0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6। दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूं मैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

कुछ तो अक्सर देखा जाता है कि कई बार हम आप श्रोताओं की जब कॉल ले लेते हैं, आपसे बातचीत हो जाती है, उसके बाद में भी बार बार रिपीट कॉल करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, आप हमें परेशान ना करें, केवल आपका एक बार कॉल ले लेते हैं एक नंबर से, उसके बाद में कॉल करने का प्रयास ना करें।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: हर्षिंगा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: केडीआर से, स्कूल के पीछे से।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: वाला मिसाजुमा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी कमेंट कैसा?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं।
4: मेरा नाम अंजनी पटेल है।
5: अंजनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: सुपारिया सागर, मध्य प्रदेश।
5: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
4: दिल टोटे टोटे हो गया।
5: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है, सुना रहे हैं हम आपको, आपकी फिल्म है इसका, ये बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो DS में आपने पूरी किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ओके, थैंक यू सर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।

के साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

0: सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: सर मोनिका मीना, गंगापुर सिटी।
1: मोनिका मीना जी, गंगापुर सिटी से बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर चीता सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे मोनिका जी, आपका माइंड सही गाना।

इसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम प्रियंसी पटेल है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रियंसी?
0: मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
1: भोपाल मध्य प्रदेश से, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं गाना हाय हाय ये मजबूरी वाला सुनना चाहती हूँ।
1: हाय हाय ये मजबूरी।
0: हाँ।
1: ये कैसी ये दूरी?
0: ये
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना रेडियो सुन के। धन्यवाद।
0: हाँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: यशवंत पटेल बोल रहा हूँ, कटापुर पिपरिया चमारी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: भोली बाई लड़की बोल, तेरे दिल की प्याल बाड़ी खिलती।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: तनुजा रेगा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: माधुरगांव।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: लाल परी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर लाल परी।
0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: हेलो।
3: हाँ सर, नाम बताएं आपका।
2: चंबल घाटी मोया बसेरे मासूम शर्मा का सॉन्ग चला दो।
3: आपका नाम बताएं सर।
2: मेरा नाम प्रियांश मीना है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
3: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हेलो,
3: बात करें। हेलो सर,
2: हाँ जी, नाम बताएं आपका।
3: मारू पटेल।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: भोपाल।
2: भोपाल से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: ये तेरी मेरी यादी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम रक्षिता।
2: रक्षिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अपर सिटी से।
2: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बालम पिस्टल।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: तन्नु जा रहे हैं।
1: तन्नु कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: माधुरगांव से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: आंखें उसकी काली बनी 47 साल का है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी सप्लाई।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
0: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
2: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं?
4: तन्नू जारेगा।

0: हेलो
1: सर, नाम बताएं आपका।
0: सर चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे।
0: गाना तो सर सुपरहिट लाया है रेडियो डीएस के लिए।
1: बताएं सर।
0: कान में झमका छाल में ठुमका।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे। बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस पे खोल किया। धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: और सदाबहार वीडियोज़।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते सर।
0: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: खंडी राम गुजर बोल रहा हूँ सर, नाम बताए।
0: खंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: गाने के बोल में हमें हमीशे करा लो, दिल में कहीं खा लो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे। गाना रेडियो देश से बोल के धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: धन्यवाद।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: मेरा राहुल सैनी है।
2: राहुल सैनी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
2: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चंबल घाटी मासूम शर्मा का सॉन्ग।
2: बिल्कुल सुना रहा है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ बताएं।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम प्रियांशी पटेल है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रियांशी?
1: मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं गाना हाय हाय ये मजबूरी वाला सुनना चाहती हूँ।
0: हाय हाय ये मजबूरी।
1: हाँ।
0: ये कैसी ये दूरी?
2: ये
0: सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में खुल किया। धन्यवाद।
1: हाँ।

0: रेट मोदी एस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: ईट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: 0.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
6: हेलो
7: हेलो
6: जी नाम बताएं
7: अखिलेश जारेडा
6: कहाँ से बात कर रहे हैं
7: गंगापुर सिटी
6: बताएं जारेडा जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
7: तुमसे हुआ प्यार हम क्या करें
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप

0: जी नाम बताएं।
1: सुरेंद्र सिंह गुज्जर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तेरे का नाम।
0: हाँ जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: नाम बताएं।
1: हरी सिंह
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: हनुमान नगर
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: यहाँ के बाहुबली हमसे और प्लेस
0: बिल्कुल सर।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर आपका।
1: गुलित कुमार मीना सर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: तेरे यार ने खुला बताओ आशी का सेंटर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं। हेलो जी, नाम बताएं सर।
2: जी असद।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: सिद्धू मूसेवाले का 295।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: जी, नाम बताएं बताएं
1: गुड्डू टेलर, खानपुर बड़ौदा, खाटू
0: सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वाले का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: युवराज सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मान नगर।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ऑफलेस।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर। सर नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गाना सा क्लास से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो टी एस
1: कहीं आ रहा।

0: यस सर, नाम बताएं आपका।
1: सीताराम बोल से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे सर आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताएं।
1: बंदे अच्छे सुरक्षित है सर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी थोड़ी मामूली बरसात हुई सर।
0: बहुत अच्छी बात है सर, बरसात तो हल्की फुल्की होनी भी चाहिए, मौसम खुशनुमा बना रहना चाहिए। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगन के मुझे आनाडी फिल्म गाना में सर, और गाने के बोले क्या मौसम आया है।
0: बिल्कुल सुना।

0: नमस्ते सर जी।
1: सर नमस्कार, नाम बताएं आप।
0: हाँ सर जी, जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी साथ में, कुछ साथी हैं जी, राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी और जम्मू डोडा से हैं पुष्पनाथ शर्मा जी, पंछी राम शर्मा जी और रिंकू दीदी जी। तो आज सर जी मुझे गाना सुना दीजिए आप, जलते बदन फिल्म का गाना है ना, ये वादा भूल ना जाना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से, गाना रेडियो बेस में खोल के।
0: धन्यवाद। ओके सर जी, थैंक यू।

0: मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
1: अंजलि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: पिपरिया सागर, मध्य प्रदेश।
1: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: मैं वादा करता हूँ गंगा,
0: दिल टोटे टोटे हो गया।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है, सुना रहे हैं हम आपको, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर,
1: वेलकम।

0: अरे आप आपकी फरमाइश सही कहा। हेलो
1: हेलो अंजलि।
0: जी, नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इश्क दफानी है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आप आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो जी, नाम बताए सर आपका।
1: नमस्ते,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बोलो,
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: राजू प्यार ना करिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करिए।

0: नमस्कार सर।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं।
0: विनोद कुमार सैनी।
1: विनोद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी मऊकला।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर मुस्कान फिल्म का है, वो हो तुम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के गाना।

0: जी नाम बताएं।
1: सर नमस्ते,
0: आप बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सर तबरिया बंडा साल मध्य
0: प्रदेश। बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर अजनबी फिल्म का गिला गिला कोई जिला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी।

0: नाम बताएं सर।
1: मानसिंह गुर्जर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गोटिया रोड।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बदिवासी।
0: सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
1: रुको मेरे गाँव की छोरी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने,
1: सुनते रहिए और कुछ याद दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीच में है

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: गुड आफ्टरनून दोस्तों बग तो चुका है एक बज चुके हैं इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस कंकापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त और से पलक दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे करे क्रम हेलो फरमाई सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे करे क्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 DSFM पे।
1: एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पानी वाला एक महानदी बन जाता है। भले ही यह नदी विश्व के 10 सबसे लंबी नदियों में ना गिनी जाती हो, लेकिन इसका विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेजन और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग के बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों का जीवन दायिका रूप में विराजमान यह है विशाल, विकराल, अद्भुत ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग नामक एक पहाड़ियों में स्थित बर्फीला झरना मौजूद है। भले ही यह देखने में किसी आम ग्लेशियर के पिघलने जैसा मालूम होता हो, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग थामचोक खामबाग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में यह धारा बेहद ही खास है क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे यह जलधारा तिब्बत की पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियां नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से यह एक विशाल नदी का रूप ले लेता है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। दोस्तों, अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बलखलाती हुई गुजरती है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक गहरे घोड़े नाल के आकार का तीखा मोड़ बनाता है। यह वही जगह है जहां चीन द्वारा विशाल डैम बनाने का धमकी दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस जगह पर चीन डैम बना लेता है तो इससे पूरी तरह बांग्लादेश और भारत को ही प्रभावित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है। साथ ही यह दिहांग नदी लोहित जैसी नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र आसम और वहां से निकलकर पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद ही यह मिल जाती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपनी उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का, भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों का एवं किसान के लिए यह नदी किसी जीवन दायिका से कम नहीं है। इस नदी का पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है, और वह तेजी से बहती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों एवं यूनिक इकोसिस्टम के चलते ही यह नदी इन देशों की अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, जो कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही के वर्षों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नदी के किनारों में लगाया गया है और कुछ पर आज भी काम लगातार चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि देशों के आधार पर इस नदी को विभाजित किया जाए तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है तथा बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, साथ ही ब्रह्मपुत्र 4000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रवाह है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 124 फीट है तथा अधिकतम गहराई 380 फीट आकी गई है। अपनी असीम ताकत और अपनी विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र दुनिया का एकमात्र नदियों में से एक है जिसका मेल नाम है, अन्यथा ज्यादातर भारतीय नदियों के नाम फीमेल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र अपने साथ इतना पानी बहाता है कि यह कुछ जगहों में इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है, जिस वजह से इस नदी को चलता फिरता एक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस नदी का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस नदी की शुरुआती दौर में इसकी चारों तरफ भूरी पहाड़ियाँ और सूखी पहाड़ियाँ ही नजर आती है। दोस्तों तिब्बत के पठारी इलाकों में कम बारिश होने के कारण यहाँ जीवन का पनप पाना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़कर हिमालय की मुख्य घाटियों में प्रवेश करती है, इस नदी के आसपास पहाड़ों का रंग भी बदल कर हरा भरा हो जाता है और यह जल्दी ही घने वर्षावनों में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र के घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर एवं पेड़ पौधों की बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती है और कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियों भी पाई जाती है जिनका दुनिया में और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्व विख्यात आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क देसी नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे फेमस नेशनल पार्कों में से एक है। यहाँ का एक सिंह वाला भारतीय गेंडा यानी कि राइनो, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के जंगलों में कई ऐसी औषधि के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि बेहद ही खास है। इसके अलावा जब यह नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है तो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जो कि इतना विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है कि उसे एक अलग ही जंगल के नाम से यानी कि सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सुंदर वन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों सुंदर वन का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा है। इस जंगल का ज्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना डेल्टा के ऊपर आता है। दोस्तों यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जहाँ मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। साथ ही इस जंगल के कुछ हिस्से में पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके व्हाइट बंगाल टाइगर भी पाया जाता है जो कि बेहद ही सुंदर और आकर्षणीय है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र ऐसा नहीं है कि ये केवल अपना प्यार ही दिखाती है, लेकिन यह नदी प्यार के साथ साथ अपना उग्र रूप भी दिखाती है। हर साल मानसून में इस नदी का पानी उफान पर होता है।

0: शेरनेक्सस।
1: हाँ जी, किमी लग गया मेरा गाना लाइक
2: दिल से दिल तक 89.6 DSFM में। हर
3: Ha ha ha.

0: रेडियो डीएस दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ पीठ में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: दिल से दिल तक 89.6 DS FM हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

दोस्तों भाग तो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 DS FM पे
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: दोस्तों, वक्त हो चुका है 3:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:45 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ पीठ में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 4:02 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ अरे ओ कमला मोहसिन,

0: कुछ नहीं कमू। वो सामने कमला मौसी के घर में डाकिए को आता देख मुझे उनकी याद आ गई। मुझे तो डर है कि वो मुझे भूल तो नहीं गए।
1: तो क्या हुआ? तुम ही उन्हें चिट्ठी लिख दे।
0: ठीक है, हम कल ही चलेंगे उस निगोड़े डाकिए के पास चिट्ठी लिखवाने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ पीठ में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।
3: हेलो नमस्कार।
4: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: सागर बोल रहा हूँ मैदान से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
4: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन गाने सुनाने के लिए भोले बिछले यादों में।
4: जी वेलकम सर।
1: 89.6 पे रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: ओ खंडेराम गुजर बोल रहा हूँ, राम बजरिया से।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बोलो सर, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: जी, वेलकम सर।

0: तो मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर रहा हूँ। हेलो
1: आरुणी पुलकी जी, सादर नमस्कार।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाने के बोल हैं जब तुम आ जाते हो सामने।
0: ओके तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
1: विमल शर्मा मऊकला
0: जी। कौन सा
1: गंगापुर से जी?
0: कौन सा
1: गाने के बोल है? ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे।
0: ओके मामा जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आ मोहब्बत को कोई नया नाम दे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी बहन नमस्ते।
1: नमस्ते पलक जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आप जी से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना बढ़िया लाए जी।
0: हाँ जी बताइए।
1: आया मौसम।

0: जी नाम क्या आपका?
1: खुदकुशी
0: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? चंदू सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
2: मिस्त्री की मिट्टी।
0: मिस्त्री की मिट्टी।
2: हाँ
0: एक मैम सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना। मेरी देश में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मीनाक्षी।
2: कहाँ से बात कर रही?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी मैम?
3: इश्क दे फनियार।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं
3: पूरा।

करना चाहिए।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: सिमरन तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।